इज द वॉइस ऑफ मुकेश विद प्रभु का नाम जपो मन मेरा ओ माई माइंड चांट द नेम ऑफ दैट डिवाइन लॉर्ड. लेट्स एंजॉय प्रभु का नाम जपो बाय मुकेश.